मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। तेरी मशीयत है सब पे गालिब ये है चहें सब मेरे इरादे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा बस अब

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्रे आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्रे आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

जिसके लिए सब कुछ है गवारा, तू ही तू, हाँ तू ही तू। ओ माय अल्लाह, मोर बिलवड देन माय लाइफ बी यू, तू ही तू, हाँ तू ही तू, जिसके लिए है सब कुछ गवारा। व्हाट एवर टेस्ट, ट्रायल्स, डिफिकल्टीज द पर्सन हैज टू फेस इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, कुरान एंड सुन्ना, ही सेड आई एम प्रिपेयर्ड टू डू दैट because my Allah, you are the most beloved to me. So what a person will not do for the sake of his beloved.

कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज, लाख हो मंजर पेश निगाह। कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज, लाख हो मंजर पेश निगाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे। जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे। जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे।

गुनहगारी में कब तक उम्र काटू, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फज़्ल फरमा।